0: और आइए आप सुने लता मंगेशकर की आवाज में तुलसीदास की पारंपरिक भक्ति रचना।
1: ज्ञान के बिना कर्म क्लेशमय हो जाता है और कर्म के बिना ज्ञान बांझ रह जाता है। भक्ति का उदय होते ही ज्ञान और कर्म अपने आप श्रेष्ठ हो जाते हैं, पर इस भक्ति का उदय हो कैसे? भजमन श्री रामचंद्र।

0: अब हम आपको सुनवाते हैं गोपाल शर्मा और सुखदेव कुमार की आवाज में तुलसीदास की रचना मेरो भलो कियो राम।
1: ज्ञान, कर्म और भक्ति, जब इन तीनों का संगम होता है तब जीव का ब्रह्म राम से मिलन होता है, उसमें वो एकाकार हो जाता है।

हर पल हर दिन भारतीय संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का डीटीएच चैनल रागम। आप सुन रहे थे भक्ति संगीत। यह आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी।

0: इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।
1: यह रागम सातों दिन चौबीसों घंटे उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको राग जौनपुरी पर यशराज वादन सुनवाएंगे। कलाकार हैं अनुजीत राय चौधरी, आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं संजय कुमार मुखोपाध्याय। तो लीजिए प्रस्तुत है राग जौनपुरी पर यशराज वादन, कलाकार हैं अनुजीत राय चौधरी।
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। दिस मॉर्निंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल फॉलोड बाय अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल। Listen first to a recital on the Yasraj in the Rag Jaunpuri. Our artist is Anujit Roy Chaudhary. Accompanying our artist on the tabla is Sanjay Kumar Mukhopadhyay. Listen now to the Rag Jaunpuri on the Yasraj. Our artist Anujit Roy Chaudhary.

0: अभी आप राग जौनपुरी पर यशराज वादन सुन रहे थे। कलाकार थे अनुजीत राय चौधरी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे संजय कुमार मुखोपाध्याय। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए, हम आपको सुनाएंगे राग तोड़ी पर ख्याल गायन। कलाकार हैं भ्रमंती सरकार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं आशीष मुखोपाध्याय और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं सोमनाथ बरधान। तो लीजिए प्रस्तुत है राग तोड़ी पर ख्याल। कलाकार हैं भ्रमंती सरकार।
1: You were listening to a recital on the Esraj in the Raag Jaunpuri. Our artist was Anujit Roy Chaudhuri. Accompanying our artist on the tabla was Sanjay Kumar Mukhopadhyay. This is Raagam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present a khayal. Listen to a khayal in the Raag Todi. Our artist is Vramanti Sarkar. Accompanying our artist on the tabla is Ashish Mukhopadhyay and on the harmonium is Somnath Bardhan. Listen now to a khayal in the raag Todi. Our artist Vramanti Sarkar.

0: अभी आप राग तोड़ी पर ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थे भरमंती सरकार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे आशीष मुखोपाध्याय और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे सोमनाथ बरधान। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम, 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ ख्याल इन द राग टोड़ी। आवर आर्टिस्ट वॉज भ्रमंती सरकार। Accompanying our artist on the tabla was Ashish Mukhopadhyay, and on the harmonium was Somnath Bardhan. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam, 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित अजय चक्रवर्ती का गायन. सुनिए राग नट भैरव. विलंबित बंदिश एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं पिनकधर शंकर. द्रुत बंदिश तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं रतन जड़े मोतियों सो. In the program of Hindustani Classical Music, we are presenting vocal recital by Pandit Ajay Chakravarti. Listen to Raag Nat Bhairav. Vilambit Bandish, set to Ektaal, Bol Pinak Dhar Shankar. Drut Bandish, set to Teen Taal, Bol Ratan Jade Motiyon So.

0: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: आप सुन रहे थे राग नट भैरव। तबले पर संगत कर रहे हैं शुभंकर बैनर्जी, सारंगी पर उस्ताद सुल्तान खान और हारमोनियम पर हैं वासंती महापसेकर। कार्यक्रम को जारी रखते हुए पंडित अजय चक्रवर्ती प्रस्तुत कर रहे हैं राग यमन। विलंबित बंदिश एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं सजन गलवा गेंडी डोले। मध्यलय बंदिश झपताल में निबद्ध है, बोल हैं चंद्रमा ललाट पर। द्रुत बंदिश तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं किनारे किनारे किनारे दरिया।
0: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।
1: दैट वॉज राग नट भैरव। अकंपनिंग हिम ऑन तबला शुभंकर बैनर्जी, ऑन सारंगी उस्ताद सुल्तान खान एंड ऑन हारमोनियम वासंती महापसेकर। इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोग्राम पंडित अजय चक्रवर्ती प्रेजेंट्स राग यमन। विलंबित बंदिश सेट टू एक ताल, बोल सजन गलवा गेंडी डोले। मध्यलय बंदिश सेट टू झपताल, बोल चंद्रमा ललाट पर। एंड द्रुत बंदिश सेट टू तीन ताल, बोल किनारे किनारे किनारे दरिया।

0: अभी आप सुन रहे थे राग यमन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पंडित अजय चक्रवर्ती का गायन। तबले पर संगत कर रहे थे शुभंकर बैनर्जी, सारंगी पर उस्ताद सुल्तान खान और हारमोनियम पर वासंती महापसेकर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र की भेंट थी।
1: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: That was Raag Yaman. With that, we conclude vocal recital of Pandit Ajay Chakravarti. Accompanied him on tabla, Shubhankar Banerjee, on sarangi, Ustad Sultan Khan, and on harmonium, Vasanti Mahapsekar. This was the contribution of AIR, Mumbai.
1: This is Raagam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित भीमसेन जोशी का गाया राग मारू बिहाग. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं रसी हूँ और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं तरपत रैन दिन.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present for you a vocal

0: अभी आप पंडित भीमसेन जोशी का गाया राग मारू बिहाग सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए ठुमरी बोल हैं जादू भरे नैना।
1: यू जस्ट हर्ड राग मारू बिहाग कंटिन्यूइंग विद हिज वोकल रिसाइटल पंडित भीमसेन जोशी नाउ प्रेजेंट्स अ ठुमरी इन गारा।

0: अभी आप पंडित भीमसेन जोशी की गाई ठुमरी सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए अभंग, बोल हैं देव विट्ठल।
1: यू जस्ट हर्ड अ ठुमरी गारा कंटिन्यूइंग विद हिज गुड रिसाइटल पंडित भीमसेन जोशी नेक्स्ट प्रेजेंट्स अभंग।

0: अभी आप सुन रहे थे अभंग। कार्यक्रम आखिर में पंडित भीमसेन जोशी की आवाज में ये भजन प्रस्तुत है, बोल हैं जो भजे हरि को सदा।
1: यू जस्ट हर्ड अभंग बाय पंडित भीमसेन जोशी। He now concludes his recital with a bhajan.

0: अभी आप पंडित भीमसेन जोशी का गायन सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: With that bhajan, we come to the end of the vocal recital by Pandit Bhimsen Joshi. This program was a presentation of All India Radio Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: सुनिए विदुषी शोभा गुर्टु का उपशास्त्रीय गायन प्रस्तुत है ठुमरी बोल है साजन मेरा छोड़ गया तबले पर संगत किया है महादेव इंदोरकर ने सारंगी पर जेपी खान और हारमोनियम पर बाबूराव नेजकर
2: Listen to Hindustani light classical vocal by Vidushi Shobha Gurtu. First, we will listen to Thumri. Bol, Sajan Mera Chhod Gaya. Accompanying her on tabla is Mahadev Indorkar. On sarangi, J.P. Khan. And on harmonium, Baburao Neskar.

0: अभी आप सुन रहे थे विदुषी शोभा गुरटू की गाई ठुमरी। अब सुनते हैं माज खमाज ठुमरी, बोल हैं अब कैसे धरू धीर।
1: Now we will listen to मांझ खमाज ठुमरी, बोल अब कैसे धरू धीर।

0: अब सुनिए विदुषी शोभा गुर्टू का गाया दादरा। बोल है बिंदिया ले गई हमार मछलिया।
1: दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल बाय विदुषी शोभा गुर्टू। Accompanying her on tabla was D.R. Nerurkar. On sarangi was Anant Kunte, and on harmonium was Arvind Tsafalkar. Continuing with the concert, listen to Vidushi Shobha Gurtu presenting Dadra. Bol, Bindiya le gai hamar machliya.

0: ये था दादरा। विदुषी शोभा गुरटू की गाई भैरवी ठोबरी सुनिए, बोल हैं बहुत दिन बीते सैया नहीं आए।
1: That was दादरा। Now listen to भैरवी ठुमरी by विदुषी शोभा गुरटू। बोल बहुत दिन बीते सैया नहीं आए।

ये आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी। ये रागम डीटीएच चैनल है। सुनते रहिए हर दिन हर पल भारतीय संगीत।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बागेश्वरी में गिटार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे शौमाल्य मुखोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मेहर कुंडू। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 2400 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a guitar recital in the rag Bageshri. Our artist was Shomallo Mukhopadhyay. Accompanying him on the tabla was Mihir Kundu. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

ये है रागम, 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर अनवरत भारतीय शास्त्रीय संगीत। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित हरिमोहन श्रीवास्तव का बांसुरी वादन। सर्वप्रथम आप सुनेंगे इन्हीं की बजाय बांसुरी पर राग गुर्जरी तोड़ी में धुन। मध्य लय रूपक तद्रुत लय तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित रविनाथ मिश्र।

अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिमोहन श्रीवास्तव द्वारा बांसुरी पर बजाई राग गुर्जरी तोड़ी। तबले पर संगत कर रहे थे पंडित रविनाथ मिश्र। आइए सुनते हैं इन्हीं का बांसुरी पर बजाया राग मेघ।

अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिमोहन श्रीवास्तव द्वारा बांसुरी पर बजा राग मेघ। तबले पर संगत कर रहे थे पंडित रविनाथ मिश्र। पंडित हरिमोहन श्रीवास्तव अपने कार्यक्रम का समापन बांसुरी पर बजाई बनारसी कज से कर रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिमोहन श्रीवास्तव द्वारा बांसुरी पर बजाई बनारसी कजरी। तबले पर संगत कर रहे थे पंडित रविनाथ मिश्र। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सहयोग से। ये है रागम 24 घंटे 7 दिन DTH पर अनवरत भारतीय शास्त्रीय संगीत।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में खयाल गायन. कलाकार हैं शाश्वती मंडल पॉल. राग है हमीर. विलंबित खयाल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं जाग रही सगरी रतियां. तीन ताल में निबद्ध द्रुत खयाल के बोल हैं कैसे घर जाऊं लंगरवा. संगत कलाकार हैं तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया और वॉयलिन पर प्रवीण शिवलीकर. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय शाश्वती मंडल पॉल. द रेंडेशन कमेंसेस विद द राग हमीर. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला एंड प्रवीण शिवलीकर ऑन द वॉयलिन.

आप सुन रहे हैं ख्याल गायन, कलाकार हैं शाश्वती मंडल पॉल। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय शाश्वती मंडल पॉल। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे शाश्वती मंडल पॉल से राग कौंसी कान्हड़ा। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं राजन के महाराजा। तीन ताल में निबद्ध द्रुत ख्याल के बोल हैं काहे करत मोसे बरजोरी। कंटिन्यूइंग द वोकल रिसाइटल बाय शाश्वती मंडल पॉल, यू विल लिसन राग कौंसी कान्हड़ा।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में ख्याल गायन। कलाकार थी शाश्वती मंडल पॉल। संगत कलाकार थे तबले पर सलीम अल्लाह वाले और वॉयलिन पर प्रवीण शिवलिकर। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय शाश्वती मंडल पॉल। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय सलीम अल्लाह वाले ऑन द तबला एंड प्रवीण शिवलिकर ऑन द वॉयलिन। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है विदुषी सविता देवी का गाया राग मिश्र खमाज में ठुमरी. बोल हैं कौन गली गयो श्याम. तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अख्तर हसन ने, सारंगी पर कमाल अहमद ने और हारमोनियम पर बल्लू खान ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a vocal rendition by Vidushi Savita Devi. She is accompanied by Akhtar Hasan on tabla, Kamal Ahmed on sarangi, and Ballu Khan on harmonium. First listen to Thumri in rag Mishra Khamaj. The words are, Kaun gali gayo sham?

0: अभी आप विदुषी सविता देवी का गाया राग मिश्र खमाज में ठुमरी सुन रहे थे, और लीजिए अब सुनिए दादरा। बोल हैं बिकल जिया होए रे। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अख्तर हसन ने, सारंगी पर कमाल अहमद ने और हारमोनियम पर बल्लू खान ने।
1: यू आर लिसनिंग टू ठुमरी इन राग मिश्र खमाज बाय विदुषी सविता देवी। नाउ लिसन टू दादरा। द वर्ड्स आर बिकल जिया होए रे।

0: अभी आप विदुषी सविता देवी का गाया दादरा सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए कजरी, बोल हैं तरसल जियारा हमार। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अख्तर हसन ने, सारंगी पर कमाल अहमद ने और हारमोनियम पर बल्लू खान ने।
1: यू आर लिसनिंग टू दादरा बाय विदुषी सविता देवी। नाउ लिसन टू कजरी, द वर्ड्स आर तरसल जियारा हमार। शी इज अकंपनीड बाय अख्तर हसन ऑन तबला, कमाल अहमद ऑन सारंगी and Ballu Khan on harmonium.

0: अभी आपने विदुषी सविता देवी की गाई कजरी सुनी, और लीजिए अब सुनिए झूला। बोल हैं सिया संग झूले बगिया में राम ललना। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अख्तर हसन ने, सारंगी पर कमाल अहमद ने और हारमोनियम पर बल्लू खान ने।
1: यू वर लिसनिंग टू कजरी, नाउ लिसन टू झूला। द वर्ड्स आर सिया संग झूले बगिया में राम ललना।

0: अभी आप सुन रहे थे सविता देवी की आवाज में ये झूला। तबले पर आपकी संगति की थी उस्ताद अख्तर हसन ने, सारंगी पर कमाल अहमद ने और हारमोनियम पर बल्लू खान ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू झूला बाय विदुषी सविता देवी। शी वॉज अकम्पनीड बाय अख्तर हसन ऑन तबला, कमाल अहमद ऑन सारंगी एंड बल्लू खान ऑन हारमोनियम। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए संजीवनी जोशी और साथियों के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे थे संजीवनी जोशी और साथियों के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना। अब सुनिए श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में दी आ कुलकर्णी की रचना। संगीतकार है राम कदम।

दी आ कुलकर्णी की रचना आप सुन रहे थे श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में। संगीतकार थे राम कदम। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए मालती पांडे के स्वर में कवि ब्रह्मानंद की रचना।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे मालती पांडे के स्वर में कवि ब्रह्मानंद की रचना। कार्यक्रम की अगली रचना है संत तुकाराम महाराज की, जिसे गाया है बबनराव नावड़ीकर ने।

आप सुन रहे थे बबनराव नावडीकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। कार्यक्रम में अगली भक्ति रचना है संत मीराबाई की, जिसे गाया है कीर्ति शिलेदार ने।

श्रोताओ, अभी आपने कीर्ति शिलेदार के स्वर में संत मीराबाई की भक्ति रचना सुनी। अब सुनिए संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना विठ्ठल शिंदे के स्वर में।

विट्ठल शिंदे के स्वर में आप सुन रहे थे संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए निरोबा राय की रचना माणिक वर्मा के स्वर में।